0: र श्रोताबको केही क्षणमै सम प्रसारण गरी सुनाइरहेछौँ। पहिले संस्कृत अनि त्यसपछि हिन्दीमा समाचार।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतम् आपूर्ति श्रृंखलानां शस्त्रीकरणस्य मध्ये विश्वसनीयस्य अर्धचालक विनिर्माणस्य वैश्विक केन्द्र रूपेण प्रतिष्ठापितमस्ति। असौ उक्तवान् यत् विश्वं नूतनानां विश्वसनीय विनिर्माण केन्द्राणाम् अन्वेषणं करोति तथा भारतम् एतस्याः आवश्यकतायाः पूर्तये निरन्तरं सज्जीकरोति। सः प्रतिपादितवान् यत् महत्वपूर्णेषु उद्योगेषु भारतस्य प्रगतिः वैश्विकाः आपूर्ति श्रृङ्खलाः सुदृढीकरिष्यति तथा विश्वे परिवर्तमानानाम् आपूर्ति श्रृङ्खला सम्बद्धानाम् आह्वानानां मध्ये नूतनावसराणां सृजनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री ह्यः नवदिल्ल्यां यशो भूमौ सेमिकॉन इण्डिया इत्येतस्य पञ्चम संस्करणस्य उद्घाटनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्।
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: ततः परं कार्यक्रमस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् सेमिकॉन 2.0 इति पारिस्थितिकतन्त्रस्य अन्तर्गतम् अद्यावधि प्रायः 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां निवेश सम्बद्धाः प्रतिबद्धताः प्राप्ताः सन्ति। भाजपेति दलेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 76वें जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये ह्यः मासैक पर्यन्तं प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापिनः सेवा संकल्पाभियानस्य शुभारम्भः कृतः। अस्य अभियानस्य मुख्योद्देश्यं जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां प्रकाशयितुं तथा जनान् विशेषतः युवकान् सेवाकार्येषु प्रवर्तयितुं प्रोत्साहयितुं च अस्ति। अनेन अभियानेन गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण श्रीमोदिनः 1,000,000,000 वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 7वें दिनांके शपथ ग्रहणस्य 25 वर्ष पूर्तिरपि स्मर्यते। अभियानम् आगामी मासस्य 17 दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। विदेश मंत्रालयेन पारपत्र संशोधन नियमाः 20/26 इति अधिसूचिताः, येन 80-90 शततम वर्षस्य पारपत्र नियमेषु संशोधनं कृतमस्ति। संशोधनानुसारं 15 वर्षात् न्यून वयस्काय बालकाय प्रदत्तं 36 पृष्ठयुतं साधारण पारपत्रं 5 वर्षपर्यन्तं उतवा तस्य 18 वर्ष वयः प्राप्तिपर्यन्तं एतयोः यत् पूर्वं भवति तत् पर्यन्तं वैधं भविष्यति। अमेरिकादेशे भारतस्य राजदूतः विनयमोहन क्वात्रा उक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य शीघ्रतमवर्धमानासु प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमं तथा ऊर्जसः तृतीयः बृहत्तमः उपभोक्ता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः थिम्फू नगरे भूटान नरेशेन जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत भूटानयोः मध्ये विद्यमानां विशिष्टां मैत्रीम् इतोऽपि सुदृढीकर्तुं भूटान नरेश द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शनं महत्वपूर्णमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याम् आयोजिते तृतीये 20-प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतेन अफगानिस्तान दलं सप्तविंशत्यधिकैक शत धावनांक ही पराजित्य त्रिस्पर्धात्मिका श्रृंखलायां सर्वासु तिसृषु स्पर्धासु विजयः अधिगतः इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
3: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में शानदार 108 रन और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: व्यक्तिदेखि व्यक्ति युपीआई लेनदेन पूर्ण रूपमा निशुल्क रहनेछन्। युपीआई मार्फत पैसा पठाउन वा प्राप्त गर्न मानिसहरूलाई कुनै पनि लेनदेन शुल्क, प्लेटफर्म शुल्क वा अन्य शुल्क लगाइने छैन। त्यसकारण कुल लेनदेन मूल्यको 70% भाग ओगटेको युपीआई लेनदेनहरू पूर्ण रूपमा एमडीआर फ्रेमवर्कको दायराबाट मुक्त हुनेछन्। 2000 रुपियाँसम्मका सबै व्यक्तिदेखि व्यक्ति कारोबारहरूमा एमडीआर छुट दिनेछ। युपीआई प्रयोग गरेर यस्ता भुक्तानी गर्दा ग्राहकहरूलाई कुनै शुल्क लाग्ने छैन। सडक विक्रेताहरूसहित साना व्यापारीहरू जुन पर्सन टु पर्सन मर्चेन्ट श्रेणी अन्तर्गत युपीआई क्युआर कोड मार्फत प्रति महिना 1,00,000 रुपियाँ सम्मको भुक्तानी लिने गर्छन् उनीहरूले सबै लेनदेनमा 0 MDR लाभ उठाउन जारी राख्नेछन्। यो प्रावधानले सडक विक्रेताहरू, छेउछाउका पसलहरू र अन्य साना कारोबारीहरूलाई भुक्तानीसित सम्बन्धित अतिरिक्त लागतबाट राहत प्रदान गर्नेछ। 0.4% मामुली एमडीआर केवल 2000 भन्दा अधिकको P2M कारोबारमा लागू हुनेछ। एमडीआर भुक्तानी इकोसिस्टम सहभागीहरू, बैंक भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू र युपीआई एप्लिकेशन प्रदायकहरू बीच साझा गरिनेछ। 75,000 रुपियाँ र यसभन्दा माथिको कारोबारको लागि एमडीआर प्रति कारोबार 300 रुपियाँसम्म सीमित हुनेछ। रेलवे, दूरसञ्चार, बीमा, इन्धन र कृषि सामग्री लगायतका अत्यावश्यक र कम मार्जिन क्षेत्रहरूमा 2000 रुपियाँभन्दा माथिको कारोबारमा प्रति कारोबार 5 रुपियाँको फ्ल्याट एमडीआर लाग्नेछ। फ्ल्याट शुल्कले महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाहरू र कम मार्जिनमा सञ्चालन हुने व्यवसायहरूको लागि लागत निश्चितता प्रदान गर्नेछ। म्युचुअल फन्ड, सिक्युरिटिज, स्टक ब्रोकर र डिलरहरू सम्बन्धी भुक्तानीहरूमा 0.02% एमडीआर लाग्नेछ, जसको अधिकतम सीमा 300 रुपियाँ प्रति कारोबार हुनेछ। यो कम दर औपचारिक वित्तीय बजारमा सार्वजनिक सहभागिता कायम राख्न राखिएको हो। एमडीआर भनेको व्यापारी भुक्तानी प्रणालीद्वारा लगाइने शुल्क हो। यो युपीआई भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूमा लगाइँदैन। व्यापारीहरूले ग्राहकहरूलाई एमडीआर शुल्क नदिने कुरा सुनिश्चित गर्न बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ। युपीआई एप्लिकेशन प्रोभाइडर्सलाई प्लेटफर्म शुल्क वा लुकेका शुल्कहरू लगाउन स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले असीमित निशुल्क प्रयोगको सुविधा लिन जारी राख्नेछन्। निशुल्क युपीआई लेनदेनमा कुनै मन्थली कोटा, भोल्युम सीमा वा टियर आधारित क्यापहरू हुने छैन। ब्याङ्कहरू र एनपिसिआईद्वारा निर्धारित गरिएको दैनिक कारोबार सीमा, जुन सामान्यतया कारोबार श्रेणीको आधारमा 1,00,000 देखि 5,00,000 रुपियाँ बीच हुँदछ। डेटा विश्लेषणले पत्तो लाग्दछ कि एमडीआर केवल लगभग 4% व्यापारी लेनदेनहरूमा मात्र लागू हुनेछ। यसको अर्थ लगभग 96% व्यापारी लेनदेनहरूमा कुनै प्रभाव पर्ने छैन, किनकि यो 2000 रुपियाँको सीमा भन्दा कम छ र साना व्यापारीहरूको लागि 0 MDR फ्रेमवर्कको दायरामा आउँदछ। त्यसकारण यो फ्रेमवर्कले व्यक्तिहरू, लघु उद्यमहरू र साना व्यवसायहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ, जबकि ठूलो व्यापारी कारोबारहरूमा सीमित शुल्क पनि लगाउँछ। साना व्यापारीहरूबीच युपीआईको प्रयोगलाई बढावा दिनका लागि एक विशेष कोष सृजना गरिनेछ।
1: अब समय प्रशासन ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
2: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट है और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्य, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
5: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
7: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
8: हमने

0: नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे आप, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था, वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
1: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
2: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
1: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
3: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
4: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
3: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शत प्रतिशत शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमेरिका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Election Commission freezes Trinamool Congress's name and symbol, asks rival factions to pick new ones for West Bengal by polls. Joint Parliamentary Committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. And in men's cricket, India crush Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win the series 3-0. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rajinagar in West Bengal. Here's a report from our correspondent.
4: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Oruproy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress, with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from

0: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हाम्रो समाज र अर्थतन्त्रका लागि समान परिश्रमीको अभ्यास किन आवश्यक छ त? गरिबी निवारणको लागि निष्पक्ष परिश्रमिकले परिवारको आर्थिक स्थिति सुधार गरी समग्र समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउँदछ। आर्थिक समृद्धिको लागि विभेदमुक्त कार्यस्थलले उत्पादकत्व बढाउनका साथै सक्षम जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्छ। कानूनी र सामाजिक समानताको लागि संविधान र कानूनी अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनले समाजमा सुशासन र विश्वास कायम गर्छ। पूर्ण श्राप पारिश्रमिक समानता हासिल गर्न पारदर्शी नीतिको कार्यान्वयन, संस्थागत सुधार र निरन्तर सचेतना आवश्यक छ। ताउनुहोस् हरेक क्षेत्रमा श्रमको उचित सम्मान र समान परिश्रमिकको सुनिश्चितताका लागि एकबद्धता जनाऊ। त श्रोता, अहिलेलाई सुनौ यो कार्यक्रमको अर्को गीत।

0: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रिलीज के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित
2: हिन्दी चलचित्रका गीतहरू सुनाउने क्रममा प्रथम गीत यहाँहरूले सुन्नुभएको थियो लता मंगेशकरको स्वरमा रुदाली चलचित्रबाट, जसमा संगीत रहेको थियो भूपेन हजारिकाको अनि शब्द थियो गुलजारको। यहाँहरूले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणी खरसाङ केन्द्रबाट। र अब यो अर्को गीत यहाँहरू समक्ष राखिरहेछु आशा भोसले अनि अमित कुमारको युगल स्वरमा, जीवा चलचित्रबाट संगीत छ आरडी बर्मनको अनि शब्द छ गुलजारको।

0: यो प्रसारण हो आकाशवाणी खरसाङको रबको केही क्षणमा आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार रिले गरी सुनिरहेका छौं।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरलम और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे कोच्चि में मलयालम दैनिक जन्मभूमि के एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को वे बंगलुरु में भारतीय वायुसेना को तेजस के 2 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 बुनियादी प्रशिक्षण विमान सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
3: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। निदेशालय ने कहा है कि कार्रवाई बैंक की सरायकेला शाखा में बड़े पैमाने पर हुई कथित धोखाधड़ी की जांच के अंतर्गत की जा रही है। भारत ने न्यूयॉर्क में अगले सप्ताह होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा

वीडियो के जरिए संबोधित करने के पक्ष में मतदान किया है। इससे पहले पिछले वर्ष अमेरिका द्वारा वीजा न मिलने पर श्री अब्बास को वीडियो के जरिए महासभा को संबोधित करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोतागण, अहिले प्रस्तुत थियो बंगला कार्यक्रम। हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। रबको केही क्षणमा आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार रिले गरी सुनिरहेका छौं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डियल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
3: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों की वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।

0: 那么就等到这位阿们来等自动进个日不要去听我们一边可路拉丁坡上去皮下卡松生出不是些提档切不及卡上进入的卡呢提领警察别个人飘到你的学什么经验那么最后就人生不得了突击去学习当故事突击拿入南生一家图别个人可不及的学习经验这个农村看起来人这么低就是第二年经济那位因此当一地解脱生就卡上那个事业
1: This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance.Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundban and Gadchandur in Maharashtra. Security forces kill two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir.Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And Indian tech ball debutant Quimsy Joaquim D'Souza storms into semi-finals of Asian Games in Japan. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities.During his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September, Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpo Dienthungyul, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. A report.
2: Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Gyaltsuyan Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannath Bridge on the Samudrup Jongkhar Prasigang Highway and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Center in Bumthang, Bhutan.India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500 kilowatt Lunana hydropower project. During the meeting, the two sides also expressed satisfaction at the implementation of the joint vision on energy partnership of March 2024 and recalled the recent strides in the energy cooperation, including the inauguration of the 1020 megawatt Punatsungchu 2 hydroelectric project. It also includes signing of its tariff protocol and the resumption.Of dam construction of 1200 megawatt Punatsungchu 1 hydroelectric project. Both the ministers also welcomed the signing of the agreement on concessional line of credit of 4000 crore rupees for energy projects in Bhutan. They also welcomed the active engagement of Indian companies in hydropower projects in Bhutan, adding dynamism to the existing energy cooperation. Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: The ministers also welcomed the operationalization of a UPI-based facility enabling Bhutanese nationals to make digital payments in India using Bhutanese mobile applications. During his visit, Dr. Jaishankar called on the King of Bhutan, Jigme Khesa Namgyel Wangchuk, and Bhutanese Prime Minister Ashok Chering Tobgay.India and Nepal discussed measures to facilitate greater market access for products of both countries. The Ministry of Commerce and Industry in a statement said during the two-day meeting of Intergovernmental Subcommittee on Trade, Transit and Cooperation to Control Unauthorized Trade, which concluded yesterday, both sides reviewed a wide range of issues. It was related to market access, customs and trade facilitation, standards, food safety, border infrastructure, rail and road connectivity, and other trade-related matters. The Indian delegation was led by Joint Secretary in the Department of Commerce, Ujjwal Kumar Ghosh, while the Nepali delegation was led by Joint Secretary in the Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Budh Bahadur Gurung. Union Defence Minister Rajnath Singh will grace the handing over ceremony of HAL platforms to the Indian Air Force and Pawan Hans in Bengaluru today. The public sector aviation manufacturer HAL will hand over two LCA FOC trainer aircraft to IAF, four Dhruv next generation helicopters to Pawan Hans, and the first HTT-40 basic trainer aircraft to the Indian Air Force. A contract for 16 LCA fighter aircraft and four twin-seaters in FOC configuration was placed in 2010. HAL plans to deliver 29 MK-1A twin-seater LCA aircraft to the IAF by 2033-34. We have more from our correspondent.
3: The induction of LCA Full Operational Clearance Trainer and HTT-40 aircraft and Dhruv Next Generation Helicopter in defense and civilian space will strengthen India's self-reliance in military pilot training in Indian Air Force and training of pilots in the civilian roles. The R&D efforts within the country will create a conducive ecosystem in the defense and civil aviation sector. This will reduce our dependency on imported trainer aircraft and helicopters and save foreign exchange. Sudhindra, Akashvani News, Bengaluru.
1: Indian Railways has approved a 493 crore rupee project for the construction of around 38 kilometer new rail line between Mukutban, Adilabad and Garchandur in South Central Railway. The Railways Ministry today said the new rail line will provide a shorter and more efficient rail route, reducing travel distance, transportation time and associated costs. It will also provide an alternative route to decongest the existing Wardha-Manikgarh section, supporting smoother movement of freight traffic. Indian Railways has approved the doubling of the Chowk-Karjat railway section in Maharashtra at a cost of 497 crore rupees. This step has been taken to enhance railway capacity and improve train operations in Maharashtra. The Railways Ministry said the Chowk-Karjat section forms part of the Panvel Chowk-Karjat route, which is an important corridor for both passenger and freight movement. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on the 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. In this special series of the Seva Sankalp campaign, today we examine the social and health-related changes taking place on the ground through the Swachh Bharat mission.
4: Launched under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the campaign has transformed cleanliness into a people's movement from remote villages to urban areas across Jharkhand. More than 91% of the villages in the state have been declared ODF Plus, where focused efforts are now underway on solid and liquid waste management. Calling upon every citizen to make cleanliness a part of their habits and values, Prime Minister Narendra Modi has said that cleanliness is not merely a program, it should become a part of our lives.
5: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है. स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है. देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए. भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया. सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए. सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग-अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए.
4: Inspired by the Prime Minister's vision, the construction of nearly 42 lakh Izzat Ghar or household toilets in rural areas of Jharkhand has helped ensure dignity and safety for women. At the same time, in the remote tribal areas of the state, initiatives under the Gobardhan scheme to convert waste into wealth and produce biogas are contributing to strengthening the rural economy. Rural women in Ranchi who have directly benefited from the Swachh Bharat mission shared their happiness discussed over the significant change brought about in their area.
6: Mera naam Nirupama Tigga hai. Main Nagri Prakhand.
1: I am a resident of Saparam village in Nagri block. The toilets provided in our village under the Swachh Bharat mission have proved to be very beneficial. I would like to express my heartfelt gratitude for this initiative. Around 540 toilets have been constructed in the Saparam village under our Saparam panchayat.
6: Uske liye bahut bahut dhanyawad deti hu.
4: Under the Swachhata Hi Seva campaign, towards cleanliness has not only improved people's health and quality of life, but has also strengthened the foundation of Viksit Bharat 2047 by translating the resolve of prosperity through cleanliness into reality. With Karmveer, Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
1: This is Akashwani giving you the news.
7: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
1: Welcome back to the Midday News. Northern Army Commander Lieutenant General Prateek Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Lieutenant General Prateek Sharma complimented the White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with J&K Police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. The successful operation led to elimination of two Jaish terrorists and arrest of one OGW, besides recovery of arms and ammunition. As the Election Commission has temporarily frozen the name and symbol of the All India Trinamool Congress, the Mamata Banerjee camp and the Ritabrata Banerjee camp have both submitted proposals to the Commission ahead of the forthcoming by-elections. The Ritabrata camp has proposed three alternative names and symbols. The proposed names are Nationalist Trinamool Congress, Democratic Trinamool Congress and West Bengal Trinamool Congress. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. On his arrival, General Dhiraj Seth received a ceremonial guard of honor. Later, he paid homage at the tomb of the unknown soldier in Moscow. According to the Ministry of Defense, the chief will be visiting the National Defense Control Center in Moscow and interact with senior officials of the Russian Ministry of Defense, including Vasily Sergeyevich Osmakov, Deputy Minister of Defense. The global ratings agency Moody's today raised India's real GDP growth forecast to 7% from its earlier projection of 6% for the current financial year. The agency said the upward revision reflects the resilience of the Indian economy amid the global shock caused by the conflict in West Asia. The agency expects India to continue growing faster than all other G20 economies. Moody's said India's real GDP growth rose to 8.2% year-on-year in the first half of 2026, compared with 7.3% in 2025. Microsoft CEO Satya Nadella has said artificial intelligence must reach India's farmers, small businesses and rural communities and not just big techs. Speaking to over 40 Indian-American tech leaders at the Ideas for India Forum in Seattle, Nadella urged the industry to focus on broad public access, national data sovereignty and human oversight. Indian tech ball debutant Quimsy Joachim D'Souza stormed into the semi-finals of the Aichi Nagoya Asian Games in Japan after securing two wins in the women's singles event this morning. Quimsy produced a strong comeback in her Group A match 2 encounter against Japan's Yuina Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indian debutant followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kom Yin DY in Group A match 3. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundwan and Gadchandur in Maharashtra. Security forces kill two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that we end the midday news.
8: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों को मार गिराया वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई अब समाचार विस्तार से विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डियर धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की एक रिपोर्ट
9: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा
8: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश चाहे वो कितना ही विकसित क्यों ना हो अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है लेकिन इसके लिए डिजाइन सॉफ्टवेयर उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एचटीटी 40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और चार ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। एचटीटी 40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
3: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त LCA तेजस HTT 40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
8: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
8: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
11: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद

0: जय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
3: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
4: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मैं।
5: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
2: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
1: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की।

0: पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi.com को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC-Tejas और ST-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।

0: मिलियन टन अतिरिक्त भाडा ढुवानी गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। वैश्विक रेटिङ एजेन्सी मुडिजले चालू वित्त वर्षको लागि भारतको वास्तविक जिडिपी वृद्धिको अनुमानलाई 6% बढाएर 7% पुर्याएको छ। एजेन्सीले यो संशोधनले पश्चिम एसियामा सङ्घर्षको कारण उत्पन्न अनिश्चितताको बीचमा भारतीय अर्थव्यवस्थाको शक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताएको छ। यस्तै एजेन्सीले भारतले अन्य सबै G20 अर्थव्यवस्थाहरूको तुलनामा तीव्र गतिमा वृद्धि जारी राख्ने जनाएको छ। रेटिङ एजेन्सी मुडिजले 2026 पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक आधारमा भारतको वास्तविक जिडिपी वृद्धि दर 8.2% रहेको, जबकि 2025 यो 7.3% रहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनसेवा देश सेवा र निरन्तर प्रतिबद्धताको मन्त्रद्वारा परिभाषित जनसेवाको 25 पूरा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन आज पनि जारी छ। सेवा र सुशासनको यस दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर सरकार 2047 विकसित भारतको लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा निरन्तर लागिरहेको छ। समावेशी विकास र सामाजिक सशक्तिकरणको माध्यमबाट यो समर्पणले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ। सेवा सङ्कल्प अभियानको यस विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी स्वच्छ भारत मिसनको माध्यमबाट तल्लो स्तरमा भइरहेको सामाजिक र स्वस्थ परिवर्तनको विश्लेषण गर्नेछौँ। सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
2: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
3: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
4: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
1: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है।
0: समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नको लागि सोसियल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @AR News Khersaing अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भारत र नेपाल बीच दुवै देशका उत्पादनको बजार पहुँच बढाउने विषयमा छलफल भएको छ। वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अनुसार अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि व्यापार परिवहन तथा सहयोग सम्बन्धी अन्तर सरकारी उपसमितिको दुई दिने बैठकमा विभिन्न विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। बैठकमा बजार पहुँच, सीमा शुल्क तथा व्यापार सहजीकरण, मापदण्ड, खाद्य सुरक्षा, सीमा पूर्वाधार, रेल सडक सञ्जाल लगायत अन्य विषयमा छलफल भएको थियो। भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य विभागका सहसचिव उज्जवल कुमार घोषले गरेका थिए भने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङले गरेका थिए। बैठकमा विद्यमान पूर्वाधारको उपयोगमा सुधार गर्ने र द्विपक्षीय तथा परिवहन व्यापारमा असर पर्ने परिचालन अवरोध समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। हरियाणाका मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 25 वर्षको सार्वजनिक सेवालाई समर्पित सेवा संकल्प अभियान अन्तर्गत सेवा प्रथम नवाचार चुनौती नामक नयाँ र दूरदर्शी पहल सुरु गर्नुभयो। महेन्द्रगढमा पोर्टलको उद्घाटनमा मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, यो प्लेटफर्मले विद्यार्थी, स्टार्टअप, उद्यमी, पेसेवरहरू, शोधकर्ताहरू, जमिनी स्तर इनोभेटरहरू र राज्यका आम नागरिकहरूलाई उनीहरूको नवीनतम विचार, प्रविधि, उत्पादन र समाधानहरू प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। उत्तरी सेनाका कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रतीक शर्माले जम्मू कश्मीरको उधमपुरमा अपरेसन सोहन अन्तर्गत जैसका दुई आतंकवादकारीहरूलाई मारेकोमा व्हाइट नाइट कोरको प्रशंसा गर्नुभयो। जम्मू कश्मीर पुलिस र सीआरपीएफको उधमपुर जिल्लाको मजल्टा क्षेत्रमा गरेको अभियानले आतंकवादको प्रतिकारमा संयुक्त अन्तर एजेन्सी समन्वयको शक्ति देखाएको छ। यस अभियानमा जैसका दुई आतंकवादीहरू मारिए र आतंकवादी संगठनका लागि काम गर्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो। साथमा हात हतियार र गोला बारुद पनि बरामद गरिएको छ। मौसम विभागले बिहार, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, लक्षद्वीप, उडिसा, पश्चिम बङ्गालका तराई र सिक्किमका अलग अलग स्थानहरूमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ। अण्डमान र निकोबार द्वीप समूह, केरला, माहे, तामिलनाडु, पुडुचेरी र कराईकलमा दुई दिनसम्म मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तिसगढ, कोंकण, गोवा, उडिसा, तेलङ्गाना आदि हरूमा हावाहुरीको सम्भावना छ। केरला र माएको मौसम आज तातो र आर्द्र रहने सम्भावना छ। विश्व एसियाली खेलकुद भोलिदेखि जापानको आइची नागियामा सुरु हुँदैछ। उद्घाटन समारोहमा ओलम्पिक पदक विजेता भानु भाकर र एसियाली खेलकुदका सटपुट च्याम्पियन तजिन्द्र पाल सिंह तुर भारतीय ध्वजवाहक हुनेछन्। र अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशङ्करले भुटानका विदेश मन्त्री लिन्पो डिएल डुङ्गेलसँग द्विपक्षीय सहयोगका सम्पूर्ण आयाम र पारम्परिक महत्त्वका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूको समीक्षा गर्नुभयो। भारत र नेपालबीच दुवै देशका उत्पादनको बजार पहुँच बढाउने विषयमा छलफल भएको छ अनि विश्व एसियाली खेलकुद भोलिदेखि जापानको आइची नागोयामा सुरु हुँदैछ। आकाशवाणीबाट समाचार पूरा भयो।
5: यो प्रसारण हो आकाशवाणीको र अब प्रस्तुत छ समस्वरमा यो देशभक्ति गीत।

0: एफएम 103.5 मेगाहर्जको तरंगमा हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं र अब प्रस्तुत छ एक वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी संचालिका सुरक्षित तामंग की ओर से स्वागत है हमारे आज के हिंदी वार्ता कार्यक्रम में। दोस्तों, 21वीं सदी के भारत में डिजिटल इंडिया अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का नाम है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना और प्रत्येक नागरिक को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना था। हालांकि भारत जैसे विविध देश में इस लक्ष्य को प्राप्त करना तब तक असंभव था जब तक कि डिजिटल दुनिया की भाषा को केवल अंग्रेजी तक सीमित रखा जाता। भारत की बहुसंख्यक आबादी के लिए डिजिटल माध्यमों को सुलभ बनाने में हिंदी भाषा ने सेतु का काम किया है। आज डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है।
2: हमारा आज का विषय है डिजिटल युग में हिंदी का उपयोग। श्रोताओं, जरा सोचिए, सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, किसी को संदेश भेजते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं या किसी विषय को इंटरनेट पर खोजते हैं। आज हमारा बहुत सा समय मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के साथ बीतता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन डिजिटल माध्यमों में हमारी भाषा कहाँ है? क्या हम हिंदी में मोबाइल चला सकते हैं? क्या हम हिंदी में पढ़ सकते हैं? क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं? क्या हम हिंदी में खरीदारी का कार्यक्रम डिजिटल युग में हिंदी के उपयोग में कर सकते हैं? क्या डिजिटल युग में हिंदी के उपयोग के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं? इत्यादि बहुत सी बातें दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? आज हिंदी केवल बातचीत और साहित्य की भाषा नहीं रही, वह मोबाइल की भाषा है, सोशल मीडिया की भाषा है, ऑनलाइन शिक्षा की भाषा है, मनोरंजन की भाषा है और धीरे धीरे तकनीक तथा व्यापार की भी भाषा बन रही है। जैसा कि आज का विषय है डिजिटल युग में हिंदी का उपयोग, इसमें हिंदी का बढ़ता हुआ दायरा इंटरनेट पर प्रभाव डाल रहा है। आज इंटरनेट पर अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी पाठकों और उपभोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे यह ऑनलाइन सामग्री का प्रमुख हिस्सा बन गई है। सोशल मीडिया और कंटेंट, यूट्यूब, ब्लॉग, फेसबुक और विभिन्न ऐप्स पर हिंदी में वीडियो, लेख और पोस्ट बड़े पैमाने पर साझे किए जा रहे हैं। तकनीक और AI अर्थात वॉइस टू टेक्स्ट, गूगल व अन्य वॉइस असिस्टेंट, यूनिकोड फॉन्ट, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशंस टूल ने डिजिटल युग में उपकरणों के माध्यम से हिंदी में टाइप करना और काम करना बहुत आसान बना दिया है। शिक्षा और ई शासन, दीक्षा जैसे डिजिटल मंचों पर सरकारी पोर्टलों के जरिए शिक्षा तथा ई गवर्नेंस में हिंदी का उपयोग आम जनता तक पहुँचने में सुगम बन रही है। आज का युग और तकनीक का युग है। आज का युग सूचना और तकनीक का युग है। यहाँ डिजिटल माध्यम हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इस बदलते परिदृश्य में हिंदी ने न केवल अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है बल्कि यह संचार, अभिव्यक्ति और संवाद का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। पहले जहाँ हिंदी मुख्यतः पारंपरिक साहित्य, रेडियो या समाचार पत्रों तक सीमित थी, वही अब यह ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, ई कॉमर्स व डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी में बने डिजिटल कंटेंट की लोकप्रियता करोड़ों दर्शकों तक पहुंच चुकी है। सरल भाषा, भावनात्मक अभिव्यक्ति और जनमानस से जुड़ाव हिंदी को तकनीकी युग में भी विशेष बनाते हैं। आज गूगल, यूट्यूब, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म भी हिंदी इंटरफेरेंस प्रदान करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी उपभोक्ताओं का वर्ग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी अब केवल भावनाओं की भाषा ही नहीं रही, बल्कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था का अभिन्न स्तंभ बन चुकी है। क्षेत्रीय आवाजों को मंच देने से लेकर ऑनलाइन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में इसकी भूमिका सराहनीय है। डिजिटल युग ने हिंदी को सीमाओं से मुक्त किया है। यह अब न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि एक सशक्त सामाजिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है। क्या आपने कभी सोचा है, जिस भाषा में आपने अपने पहले शब्द बोले, क्या वह भाषा आज आपकी डिजिटल पहचान का हिस्सा बन पा रही है? अगर नहीं तो आइए साझा करें, मिलकर सोचें, समझें और अपना एक विचार, एक अनुभव, एक सच्ची भावना हिंदी की डिजिटल यात्रा को एक नई दिशा दे सकें। डिजिटल युग में हिंदी भाषा का भविष्य अत्यंत उज्जवल प्रतीत होती है। तकनीकी विकास के साथ हिंदी भाषा ने डिजिटल माध्यमों में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लीकेशंस और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर हिंदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यह भाषा अधिक सुलभ और लोकप्रिय हो रही है। डिजिटल हिंदी के विकास से न केवल भाषा की पहुंच बढ़ी है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि का भी माध्यम बन रही है। हिंदी में उपलब्ध सामग्री की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान आसान हो गया है। इसके अलावा हिंदी भाषा के लिए विकसित किए गए टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस रिक्रिएशन और मशीन ट्रांसलेशंस जैसे तकनीकी उपकरण भाषा को डिजिटल उपस्थिति को और अधिक सशक्त बना रही है। भविष्य में डिजिटल हिंदी शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और सरकारी सेवाओं में और अधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाएगी। इससे हिंदी भाषी लोगों को डिजिटल दुनिया में एक समान अवसर मिलेंगे और भाषा की वैश्विक पहचान भी बढ़ेगी। हालांकि इसके लिए आवश्यक है तकनीकी विकास के साथ साथ हिंदी भाषा की शुद्धता और सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण किया जाए। डिजिटल युग में हिंदी की एक प्रमुख प्रवृत्ति हिंग्लिश, इंग्लिश का ही यह दूसरा रूप है। डिजिटल युग में हिंदी की एक प्रमुख प्रवृत्ति हिंग्लिश का बढ़ता प्रभाव है, जिसमें शहरी युवाओं की भाषिक पहचान को नया रूप दिया गया है। साथ ही टाइपिंग तकनीक, वॉइस टू टेक्स्ट अनुवाद सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित टूल्स ने हिंदी को वैश्विक मंच पर नई पहुंच प्रदान की है। ई शिक्षा, ई प्रशासन और डिजिटल साहित्य के क्षेत्र में हिंदी की भूमिका निरंतर सुदृढ़ होती जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी अब केवल भावनात्मक या सांस्कृतिक भाषा नहीं, बल्कि तकनीकी और ज्ञान विनिमय की भी सक्षम भाषा बन रही है। प्रस्तुत शोध में यह प्रतिपादित किया गया है कि डिजिटल युग में हिंदी का यह रूपांतर केवल भाषा परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक संक्रमण और नई पीढ़ी की मानसिकता का दर्पण है। यद्यपि इससे भाषा की शुद्धता और मानक रूप को लेकर चुनौतियां उत्पन्न हुई है, तथापि यह प्रक्रिया हिंदी की जीवंतता, अनुकूलनशीलता और निरंतर विकास का प्रमाण भी है। इस प्रकार डिजिटल युग में हिंदी भाषा की उभरती प्रवृत्तियां उसे भविष्य की वैश्विक संवाद भाषा के रूप में स्थापित करने की प्रबल संभावनाएं प्रस्तुत करती है। डिजिटल युग ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है और भाषा, विशेषता हिंदी भाषा, इस परिवर्तन से अछूती नहीं रही है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मोबाइल संचार के व्यापक विस्तार ने हिंदी के स्वरूप, प्रयोग, अभिव्यक्ति और संवेदनात्मक संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य डिजिटल युग में हिंदी भाषा के रूपांतर की उभरती प्रवृत्तियों का साहित्यिक, भाषिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना है। परंपरागत रूप से हिंदी एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा, व्याकरणिक अनुशासन और सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी भाषा रही है, किंतु डिजिटल माध्यमों ने इसके प्रयोग को अधिक सहज, संक्षिप्त और प्रयोगधर्मी बना दिया है। सोशल मीडिया मंचों, ब्लॉग्स, ई पत्रिकाओं, यूट्यूब पॉडकास्ट और ऑनलाइन समाचार पोर्टलों पर हिंदी का जो रूप उभर कर सामने आया है वह न केवल मानक हिंदी से भिन्न है बल्कि उसमें क्षेत्रीय बोलियों अंग्रेजी शब्दावली रोमन लिपि और प्रतीकों जो आजकल इमोजी अर्थात संक्षेपाक्षर इत्यादि का व्यापक समावेश दिखाई देता है। यह स्थिति हिंदी के लोकतंत्रीकरण का संकेत भी देती है जहां भाषा अभिजात वर्ग से निकलकर जन सामान्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन रही है। डिजिटल युग में हिंदी की एक प्रमुख प्रवृत्ति इंग्लिश का बढ़ता प्रभाव है जिससे शहरी युवाओं की भाषिक पहचान को नया रूप दिया गया है। साथ ही टाइपिंग तकनीक वॉइस टू टेक्स्ट अनुवाद सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स ने हिंदी को वैश्विक मंच पर नई पहुंच प्रदान की है। ई शिक्षा ई प्रशासन और डिजिटल साहित्य के क्षेत्र में हिंदी की भूमिका निरंतर सुदृढ़ होती जा रही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी अब केवल भावनात्मक या सांस्कृतिक भाषा नहीं बल्कि तकनीकी और ज्ञान विनिमय की सक्षम भाषा बन रही है। प्रस्तुत शोध में यह प्रतिपादित किया गया है कि डिजिटल युग में हिंदी का यह रूपांतर केवल भाषा परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना सांस्कृतिक संक्रमण और नई पीढ़ी की मानसिकता का दर्पण है। यद्यपि इससे भाषा की शुद्धता और मानक रूप को लेकर चुनौतियां उत्पन्न हुई है तथापि यह प्रक्रिया हिंदी की जीवंतता अनुकूलशीलता और निरंतर विकास का प्रमाण भी है। इस प्रकार डिजिटल युग में हिंदी भाषा की उभरती प्रवृत्तियां उसे भविष्य की वैश्विक संवाद भाषा के रूप में स्थापित करने की प्रबल संभावनाएं प्रस्तुत करती है। डिजिटल युग ने मानव जीवन के हर पहलू को गहरे रूप से प्रभावित किया है। भाषा भी इससे अछूती नहीं रही है। हिंदी जो भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में से एक है डिजिटल युग में एक अनूठी स्थिति में खड़ी है। यह युग जो इंटरनेट स्मार्टफोन सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से परिभाषित है हिंदी के लिए अवसरों और चुनौतियों का एक जटिल मिश्रण प्रस्तुत करता है। हिंदी का इतिहास और इसकी सांस्कृतिक समृद्धि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यह भाषा साहित्य काव्य संगीत और दर्शन का एक विशाल भंडार रही है लेकिन डिजिटल युग में हिंदी का स्वरूप और उपयोग बदल रहा है। इंटरनेट की शुरुआत के साथ हिंदी सामग्री का प्रसार पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो गई है। आज ब्लॉग वेबसाइट यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन समाचार पत्रिकाएं हिंदी में उपलब्ध हैं, जो लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं। यह एक सकारात्मक बदलाव है क्योंकि यह हिंदी को उन लोगों तक लेकर जा रही है जो शायद पहले केवल अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के डिजिटल कंटेक्ट तक सीमित थे। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जहां हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट डेटा ने हिंदी सामग्री की खपत को बढ़ावा दिया है। एक समय था जब कंप्यूटर और इंटरनेट का मतलब लगभग अंग्रेजी समझा जाता था। कंप्यूटर पर हिंदी लिखने के लिए विशेष जानकारी चाहिए होती थी। अलग अलग फॉन्ट और कीबोर्ड की समस्या रहती थी। कई बार एक कंप्यूटर पर लिखी गई हिंदी दूसरे कंप्यूटर पर सही दिखाई नहीं देती थी। फिर आया यूनिकोड। यूनिकोड ने देवनागरी में लिखना और हिंदी सामग्री को अलग अलग उपकरणों पर पढ़ना बहुत आसान बना दिया। आज हम मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड चुन सकते हैं, हिंदी में संदेश लिख सकते हैं और बोलकर भी हिंदी टाइप कर सकते हैं। अब किसी विद्यार्थी को हिंदी में जानकारी चाहिए तो वह इंटरनेट पर खोज सकता है। किसी किसान को खेती से जुड़ी सलाह चाहिए तो वह हिंदी का वीडियो देख सकता है। किसी रोगी को स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी चाहिए तो उसे हिंदी में सामग्री मिल सकती है। कोई गृहिणी नई रेसिपी सीखना चाहे तो भी हिंदी में वीडियो उपलब्ध है। कोई युवा रोजगार या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहे तो उसके लिए भी हिंदी में अनेक डिजिटल मंच मौजूद है। इस प्रकार डिजिटल तकनीक ने हिंदी को केवल सुरक्षित नहीं बल्कि उसे नए नए क्षेत्रों में उपयोग करने का अवसर दिया है। आज सोशल मीडिया हिंदी के विकास का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूट्यूब और अन्य मंचों पर लोग हिंदी में अपनी बात रख रहे हैं। कोई कविता लिख रहा है, कोई कहानी सुनाता है, तो कोई सामाजिक समस्या पर चर्चा कर रहा है, कोई समाचार समझाता है, तो कोई अपने गांव या शहर की संस्कृति दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। पहले किसी लेखक या कलाकार को अपनी रचना लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रिका, समाचार पत्र या प्रकाशक की आवश्यकता होती थी। आज वह अपने मोबाइल से अपने कविता रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ ही क्षणों में हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यही डिजिटल माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। अभिव्यक्ति का लोकतंत्रीकरण अब केवल बड़े शहरों में रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि गांवों, कस्बों और दूर दराज के क्षेत्रों के लोग भी अपनी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। दार्जिलिंग जैसा सुंदर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र का उदाहरण ले, यहाँ की प्राकृतिक पहाड़ी सुंदरता, लोक परंपराएं, खान पान, पर्यटन और स्थानीय अनुभव हिंदी डिजिटल सामग्री के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाए जा सकते हैं। लोग, कोई स्थानीय युवा अपने क्षेत्र पर हिंदी में वीडियो बना सकता है, कोई बुजुर्ग अपनी लोक कथा सुना सकता है, कोई विद्यार्थी स्थानीय इतिहास पर ब्लॉग लिख सकता है। इससे हिंदी केवल भाषा नहीं रहती, वह स्थानीय संस्कृति और अनुभवों को जोड़ने वाला पुल बन जाती है। डिजिटल युग में शिक्षा का स्वरूप भी तेजी से बदला है। आज विद्यार्थी मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहायता से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी में ऑनलाइन कक्षाएं, शैक्षिक वीडियो, ई पुस्तकें, ऑडियो सामग्री और अभ्यास पत्र उपलब्ध हैं। इससे उन विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ है जिन्हें अंग्रेजी में पढ़ने में कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। यहाँ एक बात समझना आवश्यक है, वो यह है, ज्ञान किसी एक भाषा का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि विज्ञान, गणित, इतिहास, स्वास्थ्य और तकनीक की जानकारी केवल कठिन अंग्रेजी में उपलब्ध हो तो समाज का एक बड़ा वर्ग उससे दूर रह जाएगा। जब वही जानकारी सरल हिंदी में मिलती है तो विद्यार्थी उसे आसानी से समझते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में हिंदी का प्रयोग केवल अनुवाद तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी मौलिक हिंदी सामग्री तैयार करनी होगी जो भारतीय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, उदाहरणों और जीवन परिस्थितियों से जुड़ी हो। उदाहरण के लिए, ग्रामीण विद्यार्थियों को पढ़ाते समय खेत, मौसम, स्थानीय बाजार और गांव से जुड़े उदाहरण अधिक प्रभावी होंगे। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए भी स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़े उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे, तभी जाकर के यह उपयोगी हो सकता है। डिजिटल दुनिया ने हिंदी के रोजगार के अवसर प्रदान किए। आज हिंदी में सामग्री लिखने वाले लेखक, अनुवादक, वीडियो निर्माता, समाचार प्रस्तुतकर्ता, सोशल मीडिया प्रबंधक, पॉडकास्ट संचालक और ऑनलाइन शिक्षक काम कर रहे हैं। कई कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं की जानकारी हिंदी में देती है, क्योंकि वे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना चाहती है। ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं में हिंदी का उपयोग बढ़ने से आम नागरिकों के लिए यह सुविधाएं अधिक सरल हुई है। मान लीजिए किसी छोटे व्यापारी को अपने उत्पाद की जानकारी केवल अंग्रेजी में देनी पड़े, संभव है कि उसके बहुत से ग्राहक उसे ठीक से न समझ पाए, लेकिन यदि वही जानकारी सरल हिंदी भाषा में दी जाए तो ग्राहक का विश्वास बढ़ता चला जाता है। इसलिए हिंदी डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। हिंदी में अच्छा और विश्वसनीय कंटेंट तैयार करना अब केवल भाषा सेवा नहीं बल्कि रोजगार और व्यवसाय का अवसर भी है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी हिंदी की डिजिटल उपस्थिति बहुत मजबूत हुई है। यूट्यूब चैनल, वेब सीरीज, ऑनलाइन समाचार, ऑडियो कार्यक्रम और पोस्टकार्ड हिंदी को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। आज कोई व्यक्ति अपने पसंदीदा विषय पर हिंदी में कार्यक्रम सुन सकता है, चाहे वह साहित्य हो, संगीत हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, स्वास्थ्य हो या अपना करियर। रेडियो और पॉडकास्ट की विशेषता यह है कि इनमें आवाज, भाव और अपनापन होता है। जब कोई बात अपनी भाषा में सुनी जाती है तो उसका प्रभाव अधिक गहरा हो सकता है। डिजिटल पत्रकारिता ने समाचारों की पहुंच भी बढ़ाई है। अब लोग मोबाइल पर हिंदी समाचार पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तेजी से समाचार देने की होड़ में गलत सूचना, अधूरी जानकारी और सनसनीखेज शीर्षकों से बचना आवश्यक है। हिंदी में सामग्री अधिक हो यह अच्छी बात है, लेकिन वह सही, संतुलित, विश्वसनीय और जिम्मेदार से भरा हो यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। डिजिटल माध्यमों ने हिंदी के रूप को भी बदला है। आज लोग हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसे आमतौर पर हिंग्लिश कहा जाता है। हम बातचीत में कहते हैं मोबाइल चार्ज करो, पेन रखो, मैसेज भेज देना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फाइल डाउनलोड कर लो इत्यादि। बहुत सी ऐसी शब्द हैं जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। भाषा हमेशा बदलती रहती है, नई तकनीक के साथ नए शब्द आते हैं, इसलिए हर नए शब्द को भाषा के लिए खतरा मानना उचित नहीं होगा। भाषा की जीवंतता इस बात में है कि वह समय के साथ नए शब्दों और नए अनुभवों को अपनाती हुई आगे बढ़े। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम हिंदी वर्तनी और व्याकरण की पूरी उपेक्षा कर दें। सोशल मीडिया पर जल्दी लिखने के कारण कई बार शब्द गलत लिखे जाते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। रोमन लिपि में हिंदी लिखने की आदत बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए आप कैसे हैं, इसको कई लोग इंग्लिश में AAP आप, KAISE कैसे, HAIN हैं लिखते हैं। इससे बातचीत तो हो जाती है, लेकिन देवनागरी में लिखी हिंदी का अभ्यास कम हो सकता है। इसलिए श्रोताओं आवश्यकता है संतुलन की। अनौपचारिक संदेशों में सुविधा के अनुसार भाषा का प्रयोग हो सकता है, लेकिन शिक्षा, पत्रकारिता, सरकारी कामकाज और गंभीर लेखन में स्पष्ट, सरल और मानक हिंदी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज हम कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे संक्षेप में AI कहते हैं, ये युग के प्रवेश कर चुके हैं। इस युग में AI के माध्यम से मशीनें हमारी भाषा को समझने, उसका अनुवाद करने, आवाज को लिखित शब्दों में बदलने और सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रही है। हिंदी के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है। यदि कोई व्यक्ति हिंदी में बोलकर मोबाइल को निर्देश दे सके, हिंदी में किसी दस्तावेज का अनुवाद कर सके या अपनी आवाज से संदेश लिख सके, तो डिजिटल तकनीक अधिक समावेशी होगी। प्राकृतिक भाषा, प्रसंस्करण, मशीन अनुवाद और AI आधारित तकनीकें हिंदी को तकनीकी अनुप्रयोगों में स्थापित करने में सहायता कर रही है। हालांकि हिंदी में वर्तनी, शब्दों के अलग अलग उच्चारण, बोलियों की विविधता और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि AI हिंदी को केवल अंग्रेजी का अनुवाद बनाकर न रखे, हिंदी को अपनी शैली, मुहावरे, लोक भाषाएं और सांस्कृतिक संदर्भ है तकनीक को इन्हें समझना और सम्मान देना होगा। श्रोताओं, डिजिटल युग में हिंदी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या कंपनियों, तकनीकी संस्थाओं की नहीं है, इसमें हम सभी की अहम भूमिका है। हम कुछ छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। जहां संभव हो मोबाइल और डिजिटल सेवाओं में हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी में पढ़ें और अच्छी सामग्रियों को दूसरों तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले उसकी भाषा और तथ्य जांच लें। बच्चों को हिंदी में पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। स्थानीय कहानियों, लोकगीतों, परंपराओं और अनुभवों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित करें। हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। हिंदी का विकास दूसरी भाषाओं को दबाकर नहीं, बल्कि उनसे संवाद और सहयोग करके होना चाहिए। हिंदी को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने के लिए हमें निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। सरलता, इसलिए कि हर व्यक्ति समझ सके। गुणवत्ता, इसलिए कि सामग्री उपयोगी और प्रभावशाली हो। विश्वसनीयता, इसलिए कि डिजिटल युग में गलत जानकारी का प्रसार न हो। अर्थात हिंदी को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने के लिए हमें ऊपर लिखी 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से हम यह समझ सकते हैं कि डिजिटल युग में हिंदी के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इसलिए कि हमें बदलती तकनीक, अंग्रेजी के प्रभाव, गलत वर्तनी और अपुष्ट जानकारी का सामना करना है। अवसर इसलिए कि आज हिंदी पहले से कहीं अधिक लोगों तक पहुंच सकती है। वह शिक्षा, व्यापार, रोजगार, मनोरंजन, पत्रकारिता और तकनीक हर क्षेत्र में अपनी जगह बना सकती है। हिंदी को डिजिटल दुनिया में जीवित रखने का अर्थ केवल हिंदी दिवस पर हिंदी बोलना नहीं, इसका अर्थ है मोबाइल पर भी हिंदी लिखना, हिंदी में ज्ञान साझा करना, अच्छी हिंदी सामग्री तैयार करना और अपनी भाषा को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। हमें यह याद रखना चाहिए कि भाषा तभी आगे बढ़ती है जब उसका उपयोग बढ़ता है। हिंदी का भविष्य केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, वेबसाइट, ऐप, वीडियो और आवाज़ में भी लिखी जाएगी। आइए हम संकल्प लें कि तकनीक का उपयोग करेंगे लेकिन अपनी भाषा को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम हिंदी को केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि भविष्य की सक्रिय और सक्षम भाषा बनाने में भागीदारी लेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी अभिव्यक्ति है और अंत में डिजिटल युग में हिंदी हमारा भविष्य भी है। यह कहते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा चाहते हैं। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे इजाजत दीजिए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो करसियांग।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डिजिटल युग में हिंदी भाषा का उपयोग और इस वार्ता को प्रस्तुत कर रहे थे ओम प्रकाश गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपकी संचालिका सुरक्षिता मंग को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: श्रोताहरू, अबको केही क्षणमा नै आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसारण गरी सुनाइरहेछौ हिन्दी समाचार।
1: समाचारके साथ मैं जया भारती। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता वाली धरती पर हुए हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मक्का पर हुए हमले के प्रयास के बाद भी भारत ने एक बयान जारी किया था। जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करते हैं। ये बाब अल मंडाब से होकर गुजरने वाले नौवहन स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद जताई है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और एक भारतीय युद्धपोत के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने विरोध पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है।
2: पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और वह अभी भी समुद्र में है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त अभ्यर्थी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया गया है और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया गया है और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के रूप में माना जाएगा। इसके अंतर्गत पार्टी के नियंत्रण को लेकर आंतरिक विवाद के बीच अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नाम और फूल घास चिन्ह को निलंबित कर दिया गया था। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजिनगढ़ में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की अगली कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित मंजरी वी महाजन से बातचीत प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के साथ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण पर उनके कार्यों पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। इसे आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुन सकते हैं। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विमसी जोआकिम डिसोजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेकबॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसोजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: समाचारपछि पुनः स्वागत छ श्रोताहरू. हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ. म कार्यक्रम प्रस्तोता चन्दन थापा स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेको छु. मेरो साथमा हुनुहुन्छ मेरा प्रसारण सहयोगी सुभाष. यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ आकाशवाणी खरसाङको 103.5 मेगाहर्जको तरङ्गमा. दार्जिलिङका श्रोताहरूले यस प्रसारणलाई सुन्न सक्नुहुनेछ आकाशवाणीको 100.2 मेगाहर्जको तरङ्गमा, साथै प्रसार भारतीको ओटिटी वेब्स अनि न्युज अन एआइआर एपमा पनि श्रोताहरूले यस कार्यक्रमलाई सुन्न सक्नुहुनेछ.

0: साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शिक्षिका हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपने गवर्नमेंट स्कूल में जिसकी वो प्रिंसिपल हैं, वहाँ पर बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागृति पर बहुत बहुत बढ़ावा दिया है। और साथ ही साथ उन्हें अभी 5 सितम्बर को टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। मंजरी वी महाजन जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में मंजरी जी, और सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
1: धन्यवाद
0: मंजरी जी। अगर हम खास तौर से प्रकृति की बात करें, पर्यावरण के प्रति जो आपने एक संवेदनशीलता दिखाई है और अपने विद्यालय के द्वारा बच्चों में भी उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है, हमें बता सकती हैं कि कौन सा आपको सबसे प्रमुख पहलू लगता है?
1: हमने एकेडमिक्स के साथ साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया है और बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अध्ययन होता है वो मात्र किताबों से ही नहीं होता। जब हम प्रकृति में जाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे और ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं
0: और प्रकृति हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका संरक्षण। तो आप हमें बता सकते हैं कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेस्ट मैनेजमेंट का, उस दिशा में आपने कौन कौन सी पहल है जो आप हमें शेयर करना चाहेंगी ताकि हमारे जो श्रोता है वो भी उससे प्रेरणा ले सके?
1: हमारे स्कूल में विद्यार्थियों ने वेस्ट के ऊपर बहुत काम किया है, वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, जो वेट वेस्ट होता है उसे हम कंपोस्टिंग के लिए डाल देते हैं, और जो ड्राई वेस्ट होता है, खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसे कैंपस से इकट्ठा करके या सराउंडिंग से इकट्ठा करके हम पंचायत में डिपॉजिट करा देते हैं। तो इस तरह से वेस्ट को मैनेज।
0: तो वेट वेस्ट जब आप कह रही हैं, तो वेट वेस्ट में थोड़ा सा अगर हमें विस्तार से बता सके कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वेस्ट वेस्ट में आती हैं?
1: वेट वेस्ट में आ जाता है जैसे किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स हैं, और गार्डन वेस्ट है, लीव्स हैं, फॉलन लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, ये सब वेट वेस्ट में आ जाते हैं।
0: सो जो भी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, सो इनको आप कह रहे हैं कि इनको एक जगह आप इकट्ठा करते हैं। तो जो आपने कंपोस्टिंग की बात करी, थोड़ा हमें सरल शब्दों में समझा सकती हैं कि कंपोस्टिंग क्या है और क्यों आप कंपोस्टिंग पर इतना बल दे रहे हैं?
1: कंपोस्टिंग में क्या है कि जो वेट वेस्ट होता है इसको हम एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट में डाल देते हैं। बच्चे काम करते हैं, हमारे टीचर्स भी उनको गाइड करते हैं, मैं खुद बच्चों के साथ लग जाती हूँ, और साथ में अर्थवॉर्म्स डाले जाते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और कुछ दिनों के बाद ये जितना भी वेट वेस्ट होता है ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कंपोस्ट बनती है उसे हम यूज कर लेते हैं किचन गार्डन में, हर्बल गार्डन में, या एज पॉटिंग मिक्स। तो ये तो बहुत बेनिफिशियल है, कंपोस्ट हमें आराम से फ्री में मिल जाती है।
0: तो इससे आपको लगता है कि जो बच्चे हैं जो आते हैं, आपके जो छात्र हैं, उनमें भी एक अवेयरनेस पैदा होती है कि हम किस तरह से कूड़े से भी वैल्यू निकाल सकते हैं?
1: एक्चुअली उन्होंने पहले बुक्स में पढ़ा था कि कंपोस्टिंग होती है, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, ये प्रोसेस है, लेकिन जब वो खुद करते हैं तो फिर उनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिलता है, और मैंने देखा वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, वो पूछते भी हैं, मैम कितना टाइम लगेगा इसे बनने में, अब ये बन गई अब इसका क्या करेंगे। तो मैंने देखा वो इंक्विजिटिव बनते हैं जब हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं।
0: एकेडमिकली तो ये सब चीजें सिखाई ही जाती है, डेफिनेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल उनको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिसको वो आगे चलकर अपनी पूरी जिंदगी में उसको अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक और जो पहलू है पानी का, उसके प्रति किस तरह से आपने उसमें कार्य किया है ताकि उसके जल का जो एक मूल्य है कि जल का संरक्षण करना कितना जरूरी है इसको बच्चे समझ पाए?
1: इसके लिए बच्चों को गाइड किया जाता है कि वो वाटर को वेस्ट ना करें, टैप्स को बंद रखें, इवन जो वेस्ट वाटर होता है जैसे जो टैप से आ रहा है उसको हमारी कोशिश रहती है कि उसको यूज करें, हम रीयूज करें फ्लावर बेड्स के लिए, और स्कूल में सोक पिट लगाया गया है, वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं जिनमें हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं रेन वाटर को, और जब जरूरत होती है तो प्लांट्स के लिए उनको हम यूज कर लेते हैं वाटरिंग के लिए।
0: सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके लिए आपने काफी कार्य किया है?
1: रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, मैंने अभी आपसे बताया, स्टोरेज टैंक में हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं रेनी सीजन में, और जैसे जैसे फिर सीजन चेंज होता है, वाटर स्केर्सिटी होती है, तो वहां से हम पानी निकाल कर प्लांट्स को दे देते हैं।
0: सो आपको लगता है कि इससे बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा होती है कि ये अपने घर जाके अगर जब बताते हैं बाकी लोगों को कि इस तरह से हमारे स्कूल में हो रहा है, तो पूरा जो वो कम्युनिटी है उसमें भी इस तरह के फिर एफर्ट्स और लोग भी करते हैं?
1: बच्चे घर जाते हैं, मदर्स को बताते हैं, तो जब हमारी स्कूल की मीटिंग्स होती हैं, पीटीएम्स होती हैं, तो मैंने देखा जो मदर्स आती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे बच्चे तो हमें भी घर में कूड़ा नहीं फेंकने देते इधर उधर, कहते हैं इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करो, मम्मा नलका मत चलाओ ऐसे, हमें स्कूल में सिखाया गया है कि पानी वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने देखा कि ये जो हम स्कूल में सिखाते हैं वो घरों तक पहुंच ही जाता है।
0: आप हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे और जो बच्चे सुन रहे होंगे और छात्र सुन रहे होंगे, उनके लिए बता सकती हैं कि जो ये प्लास्टिक्स है ये कितना हार्मफुल है और इसको अलग से जब हम वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं उस पर इतना बल क्यों दिया जाता है?
1: प्लास्टिक जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जब हम इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ डाल देंगे तो जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होगा, ये एनवायरमेंट में कई ईयर्स तक ऐसे ही रहता है। तो इसको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसको सेग्रीगेट करें और इसको फिर प्रॉपरली मैनेज कर सकें, रिसाइकल कर सकें।
0: तो ये रिसाइकल की जो बात कर रही है, सिंगल प्लास्टिक यूज, हमने सुना भी है कि हिमाचल प्रदेश में इसके बारे में काफी ज्यादा एक जागरूकता है कि जो प्लास्टिक, जैसा आप कह रही हैं कि जब वो हमारे जलाशय में जाता है या कहीं भी जाता है तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में आप इसको रिसाइकल करने के या अपसाइकल करने के क्या आपके एफर्ट्स हैं?
1: एक तो ये है कि मेरे एरिया में बरसात में बहुत ज्यादा रेन्स होती हैं, तो हमने देखा कि जो वेस्ट इधर उधर पड़ा होता था वो पानी से बहकर सारा ही कोई सड़क के किनारे अक्सर हमने देखा, वो हमें दिखाई देता था। तो मैंने फिर अपने बच्चों को मोटिवेट किया कि देखो बच्चों, किस तरह से हमारी जो ये बावड़ी है, हमारे स्कूल के पास कुछ बावड़ियां हैं, तो वहां बहुत प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठी होती थी, तो मैंने बच्चों को गाइड किया और दिखाया कि देखें आप किस तरह से जो प्लास्टिक है ये खराब कर रहा है इनको, तो बच्चे भी थोड़े से उनमें अवेयरनेस आई और फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि एटलीस्ट हमारे जो सराउंडिंग्स में प्लास्टिक वेस्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, हम इसे इकट्ठा करें और फिर इसे पंचायत में दे दें। इसके साथ ही एक और बताना चाहूंगी, जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं तो हम इनको भी इकट्ठा करते हैं, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स और हम सब टीचर्स मिलकर सराउंडिंग से, और इनको हम एक पुणे बेस्ड एनजीओ है वहां पर डोनेट कर रहे हैं, और वो जो एनजीओ है वो इनको अपसाइकल करती है, तो हमारा ये भी इनिशिएटिव है।
0: तो अपसाइकल का थोड़ा सा हमें अगर बता सके,
1: अपसाइकल में ये है कि जो हम वेस्ट रैपर्स उनको भेजते हैं, वो एनजीओ उनको कटिंग वटिंग करके उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बना लेती है, जैसे बैग्स बना लेगी, कोस्टर्स बना लेगी, तो इस तरह से वो एनजीओ जो है वो इनको रीयूज कर रही है।
0: आप कह रही है कि बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ मिलके ये सारा कार्य किया जाता है, कितना चैलेंजिंग होता है बच्चों को प्रेरित करना? क्योंकि स्कूल का एक इमेज कई बार होता है कि वहां आप गए, आपने पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, लेकिन ये जो एडिशनल डायमेंशन है कि एनवायरमेंट के प्रति इस तरह की जागरूकता और इस तरह के जमीनी स्तर पर प्रयास करना, उसके लिए प्रेरित करना बच्चों को कितना चैलेंजिंग होता है?
1: मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जिस स्कूल में काम कर रही हूँ वो रूरल एरिया का स्कूल है, तो जिसकी वजह से वहां पर जियोग्राफिकल कंडीशंस तो डिफिकल्ट है ही, इसके साथ अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ज्यादा अवेयर नहीं होते, डिजिटल नॉलेज नहीं है इतना, डिजिटल डिवाइड है, ना इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी चलती हैं, कई बार उनके पास फोन्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनको इन चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से मुझे ज्यादा चैलेंजेस रहे उनको समझाना, उनको ये इम्पोर्टेंस बताना कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे हमने प्रयास किए, टीचर्स ने प्रयास किए, मैंने खुद मॉर्निंग असेंबलीज में बच्चों को गाइड किया, इन्वॉल्व किया, तो वो समझने लगे।
0: तो टीचर्स भी साथ में इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर बच्चों को लगता है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए हमने पंचायत मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया, हमने प्रोजेक्ट किया, 2 साल से मैं कर रही हूँ, वेस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट है विप्रो अर्दियन की तरफ से, और ये जो प्रोजेक्ट किया तो इसमें हमने कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया, और दोनों ही सालों में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुआ। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैंने देखा बच्चों में बहुत अवेयरनेस आई, वो छोटी छोटी टर्म समझने लगे और वो इम्पोर्टेंस समझने लगे कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों जरूरी है।
0: तो आपको राजकीय स्तर पर भी अवार्ड्स मिले हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या आपके ऐसे प्रयास थे जिनके लिए आपको सम्मानित किया गया?
1: इसी वर्ष 5 जून को एनवायरमेंट डे वाले दिन हमें हमारे स्कूल को एनवायरमेंट लीडरशिप का अवार्ड मिला, और इसमें हमें 50,000 का प्राइज मिला है, और ये जो अवार्ड है ये हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें ये अवार्ड दिया, और पिछले वर्ष भी इसी दिन 5 जून को ही हमें वेस्ट वॉरियर का अवार्ड मिला था वो भी हमें हमारे जो माननीय सीएम हैं उन्हीं से मिला था तो दोनों ही बार हमारे स्कूल को ये सम्मान मिल चुका है और ये सम्मान मिला है जो हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज की हैं स्कूल में उसके लिए
0: तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है थोड़ा सा आप और विस्तार से बता सकती हैं
1: सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से हम पॉल्यूशन को कम कर सकें और हमारी जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए हम क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें
0: जी सो आपने क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करी तो आपका जो कैंपस है उसमें भी आपने एक कहे कि एक छोटे लेवल पर इसको अडॉप्ट किया है
1: जी बिल्कुल खूब सारे प्लांट्स लगाए गए हैं किचन गार्डन है हर्बल गार्डन है और मैंने तो नेस्ट भी इंस्टॉल करवाए हैं और उनमें जो बर्ड्स हैं वो जब नेस्टिंग सीजन होता है तो आकर रहते हैं मेरे बच्चे जो हैं स्कूल के वो उनको देखते हैं मुझे बताते हैं मैम आज उस नेस्ट में एक हमने स्पैरो को जाते देखा फिर कोई और बच्चा आता है वो कहता है मैम हमने वहां से निकलते हुए देखा अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे भी ये चीजें नोटिस करते हैं खुश होते हैं और
0: जी बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे जीवन का सभी का जो भी लिविंग बींग है वो है खाना खाने में भी प्रकृति में हमें तरह तरह के खाने उपलब्ध है तरह तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध है और अब जिस तरह का जो एक रिवाइवल हो रहा है पुराने जो मोटे अनाज थे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसके बारे में एक इंटरेस्ट जागरूकता फैलाने की तरफ भी आपका कोई प्रयास है
1: हमारे स्कूल में भी जब हम फूड फेस्टिवल्स लगाते हैं बैग फ्री डेज वाले दिन तो उसमें जो है मिलेट रेसिपीज को प्रमोट किया जाता है ट्रेडिशनल फूड्स को प्रमोट किया जाता है
0: आपने फूड फेस्टिवल की बात करी उस संदर्भ में आपने जो बैग फ्री डे की बात करी ये क्या कॉन्सेप्ट है
1: बैग फ्री डेज होते हैं ये गवर्नमेंट के निर्देश हैं हमें साल में 10 बैग फ्री डेज होते हैं और इन डेज वाले दिन बच्चे जो हैं 6 से 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना बैग के स्कूल में आते हैं
0: अच्छा बिना किताबों के
1: आते हैं और इसका मकसद ये है कि बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स लर्निंग कराई जाए तो उस दिन हम बच्चों को इसी तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराते हैं और उन्हें सिखाया जाता है बिना बुक्स के
0: जी
1: क्योंकि नॉलेज होता है वो बुक से ही नहीं मिलता कई बार एक हमारे कैंपस में जो प्लांट लगा है वो इटसेल्फ एक बुक बन जाता है कई बार बारिश की बूंदें बुक्स बन जाती हैं तो कई बार बीज से निकलता हुआ पौधा भी एक बुक बन जाता है तो ये कोशिश रही है हमारी कि हम बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स और बियॉन्ड द क्लासरूम टीचिंग कराएं
0: तो ये जो आप 10 बैग फ्री डेज बता रही हैं जिसमें आप कह रही हैं कि बियॉन्ड द बुक्स किताबी जो एक शिक्षा है उसके बियॉन्ड आपके प्रयास होते हैं तो उसमें किस तरह की क्या कोई प्रदर्शनी लगा हैं या कोई एक्टिविटीज
1: इन डेज वाले दिन हमने बहुत बार बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एग्जीबिशंस लगाई हैं जहां पर बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से कुछ आर्टिकल्स बनाए होते हैं डेकोरेटिव आइटम्स या कोई भी यूजफुल आइटम्स तो उनकी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं स्कूल में और मेरे एरिया में ग्रास होती है जिसे बग्गड़ ग्रास कहते हैं तो बहुत साल पहले जो लोकल लोग होते थे वो इस ग्रास से प्रोडक्ट्स बनाते थे जैसे बैठने के लिए लोकल भाषा में कहते हैं बिन्ने बनाते थे रूम्स बनाते थे लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से ना ये जो आर्ट है ये अब खत्म हो रहा है तो मैंने अपने बच्चों को इससे जोड़ने की कोशिश की है तो बैग फ्री डेज वाले दिन ही मैं जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको स्कूल में बुलाती हूँ वो बच्चों को सिखाते हैं स्टिचेस लगाना कि किस तरह से इस ग्रास से प्रोडक्ट बन सकता है और अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बना रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स बनाने लगे हैं जैसे पेन स्टैंड्स बनाते हैं या वॉल हैंगिंग तो मैंने देखा कि इस आर्ट के लिए उनमें अब इंटरेस्ट आ गया है
0: सो एक आर्ट के साथ साथ आपको लगता है कि आगे चलकर शायद उनके लिए एक व्यवसाय भी कुछ बच्चों के लिए बन सकता है क्योंकि जिस तरह से अभी जो सरकार है खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है हमारी जो ट्रेडिशनल वेल्थ है उसको चाहे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हो तो आपको लगता है कि जो ये इनिशिएटिव है या आगे चलकर बच्चों को बहुत लाभान्वित भी कर सकते
1: बिल्कुल करेगा ये स्किल डेवलपमेंट उनकी हो रही है और आगे जाकर वो इसको एज ऑक्यूपेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं
0: तो आप कोई ऐसे कोई एग्जांपल्स बता सकती हैं कि जिन पे इम्पैक्ट हुआ हो जो भी आपके खास आप कदम उठा रही हैं आउट ऑफ यू नो द आउट ऑफ कैरिकुलम उससे जो उनको इम्पैक्ट हुआ हो कोई ऐसे कोई आपके पास उदाहरण हो जो बच्चे बहुत उससे प्रेरित हुए हो
1: बच्चों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है और जो मैंने देखा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंप्रूव हुई हैं क्योंकि जब हम उन्हें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं तो हम उनके व्यूज लेते हैं तो वो अब एक्सप्रेस करना सीख गए हैं और और मैंने कई बार देखा, मैं कई बार गुजर रही होती हूँ तो पीछे से आपस में बात कर रहे होते हैं कि सपोज किसी ने टॉफी पकड़ी है तो वो दूसरा कहता है इसे मत फेंकना, तो क्यों ले आया स्कूल, ये तो अलाउड नहीं है। तब मैंने देखा कि थोड़ा उनमें है कि हमें ये काम नहीं करना है और रैपर्स और इन सबको इधर उधर नहीं फैलाना है।
0: सो मंजरी जी, एक और चीज है कि जिस तरह की अभी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं या जो एक ग्लोबल वार्मिंग की जो एक संकट है पूरे विश्व के सामने, आपको लगता है कि इसके बारे में भी एक लोकलाइज लेवल पर भी जागरूकता फैल रही है इन प्रयासों से? और कहते हैं कि जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रकृति का जहां तक हो सके संरक्षण करें, वो बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जरूरी है, और खासकर जब हम बच्चों को इसके लिए गाइड करते हैं तो वो जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वो इस स्टेज में सीखेंगे, वो ताउम्र उनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि एज टीचर्स हमारा ये बहुत रोल है कि हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें और उन्हें एनवायरमेंट के साथ जोड़ें।
0: जो एनवायरमेंट के साथ जोड़ने का आपका प्रयास है बच्चों का, ये कौन सी कक्षा से शुरू होता है?
1: हमारे पास 6 ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स हैं 12th तक, तो बस जब से वो आ जाते हैं हमारे पास तो हमारा प्रयास रहता है कि अब हम इनको थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू कर दें।
0: सो आपको लगता है कि अब जो आप कहें कि उत्साह सब बच्चों में पैदा हो गया है, या एक स्टेज होती है शुरू में आपको लगता है कि थोड़ी रेजिस्टेंस होती है और फिर धीरे धीरे ये उत्साह बढ़ता है?
1: धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से तो नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जब 6 में आते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे फिर स्कूल में डेली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटीज में सीखते हैं, तो फिर उनको उसकी आदत पड़ जाती है।
0: पंजरी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम व्यापक तौर पर बात करें, पूरे देश की बात करें, आप अपने एक्सपीरियंस से अगर बता सके, स्कूल्स कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को, ये जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत बड़ा मुहिम है जो पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को?
1: स्कूल्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर्स का, हेड्स का, क्योंकि हमारे बच्चे उस स्टेज से गुजर रहे होते हैं जिसमें जो वो सीखते हैं वो पूरी उम्र उनके साथ रहता है। तो टीचर्स का बहुत रोल है, हेड्स का रोल है कि उनको प्रॉपरली गाइड करें और एनवायरमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करें, बच्चे जाहिर है सीखेंगे।
0: इसमें एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना जरूरी होगा, किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है?
1: इसमें उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है तो मुझे लगता है तब वो ज्यादा सीखता है। ऐसे हम उसे पढ़ाएंगे, बुक से पढ़ाएंगे, तो शायद वो इतने डेप्थ में नहीं जाता, तो उनको इन्वॉल्व जितना करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा।
0: कोलैबोरेटिव
1: अप्रोच रहनी चाहिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए।
0: मंजरी जी, इको फ्रेंडली एक अप्रोच डेवलप करने के लिए आपके स्कूल में क्या इको क्लब है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या है उसका प्रमुख पहलू?
1: जी, हमारे स्कूल्स में इको क्लब्स ऑपरेट करते हैं, तो हमारे स्कूल में भी इको क्लब है इको फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो इको क्लब है इसकी मैं खुद इंचार्ज हूँ, मैंने इसे अपने पास रखा है ताकि मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड रहूं और बच्चों को एनवायरमेंट कॉन्शियस बना सकूं।
0: सो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज जो आप कह रही हैं वो क्या एक्टिविटीज मेन है?
1: वो एक्टिविटीज यही है कि किस तरह से हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज कर सकते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स इसमें आ जाती हैं, और इस तरह से ग्रीन प्रैक्टिसेस, क्लीनलीनेस, ये सब वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज, वाटर वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, ये सब इसके अंडर आ जाती है इको फ्रेंडली एक्टिविटीज।
0: जमीनी तौर पर इन एक्टिविटीज को एक्चुअली बच्चे जो है वो करते हैं आपके
1: बिल्कुल
0: गाइडेंस में,
1: बिल्कुल करते हैं।
0: सो मंजरी जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक फिर से देना चाहूंगी पर, और राजकीय स्तर पर तो ऑलरेडी आपका जो काम है उसको अप्रिशिएट किया गया है बहुत बड़े वे में, और आप ये कार्य करते रहे, और आपको बहुत बहुत आगे के लिए भी हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: जी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विद्यालय में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित मंजरी वी महाजन के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्रॉइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े, देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
2: श्रोताहरू, हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताहरू, हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ। अब सुन्नुहोस् मौसमबारे केही जानकारी। मौसम विभागको सूचना अनुसार उत्तर बङ्गालका जिल्लाहरू दार्जिलिङ, जलपाइगुडी, कालेबुङ, अलिपुरद्वार, कुचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर अनि मालदा आदिका क्षेत्रहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। साथै आगामी केही दिनसम्म यसै प्रकारका मौसमको अवस्था रहनेछ। मौसम विभागको सूचना अनुसार राज्यका कतिपय जिल्लाहरूमा पनि येल्लो अनि अरेन्ज अलर्ट पनि गरिएको छ।

0: के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
1: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
0: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्रॉइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
1: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
0: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
1: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
0: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
1: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
0: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
1: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
0: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
2: अब प्रस्तुत छ समाचार।
3: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो। देवेन थापाबाट समाचार सुन्नुहोस्। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनले आज आधुनिक जीवनको बढ्दो तनावको बीचमा योगले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, आत्मचेतना र मानसिक सन्तुलन सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोलि बिहान नयाँ दिल्लीमा पर्यावरण र जलवायु गतिशीलताको भविष्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रको उडयन कम्पनी हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एचएएलले आज बेङ्गलुरुमा भारतीय वायुसेनालाई हल्का लडाकु विमान तेजस र STT-40 हस्तान्तरण गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्री अश्विनी वैष्णवले आज भारत वैश्विक सेमिकन्डक्टर उद्योगमा एक विश्वसनीय साझेदारको रूपमा उदाइरहेको बताउनुभयो। भारतले लाल सागर क्षेत्रको बिग्रदो सुरक्षा अवस्थाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अनि विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर र नेपालका वित्त मन्त्री स्वर्णिम बाग्लेबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ। अब समाचार विस्तारमा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनले आज आधुनिक जीवनको बढ्दो तनावको बीचमा योगले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, आत्मा चेतना र मानसिक सन्तुलन सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपतिले महाराष्ट्रको लोनावालाको कैवल्य धाममा

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: श्रोताहरू, हामी आकाशवाणी खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की

0: आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा हैं। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के

0: अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियाँ तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया।

ऐसा होता है ना अक्सर, आपने कभी सोचा नहीं होता, कभी चाहा भी नहीं होता, और चलते चलते जीवन के किसी मोड़ पर एक शख्स कभी आपकी जिंदगी में शामिल हो जाता है, वो जो था बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अजनबी, और फिर पता ही नहीं चलता कि कब वो अजनबी हमारी हर दुआ का हिस्सा बन जाता है। हमें कहाँ पता होता है ये जाना पहचाना सा अपना सा अजनबी हमारी जिंदगी में हौले हौले से दस्तक दे रहा है।

प्यार की शुरुआत किसी बड़े इजहार से नहीं होती, कभी एक नजर से होती है, कभी एक मुस्कान से, और कभी उस खामोशी से जिसमें दो दिल बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। दिल की गहराइयों को समझने के लिए लफ्जों की जरूरत कहाँ, आंखें शब्दों से कहीं ज्यादा बयां करती हैं। बस वक्त लगता है समझने समझाने में।

और फिर उस खामोश इजहार के बाद की वो पहली मुलाकात भी कितनी खास होती है ना। दरअसल उस मुलाकात का इंतजार उससे भी ज्यादा खास। दिल न जाने कितने सपने सजाता है उस पहली मुलाकात के पहले, न जाने कितनी ही मुलाकातें ख्यालों में सोते जागते हो जाती हैं। उसकी आंखों का वो पहला एहसास, उसकी मुस्कान की वो हल्की सी चमक, दिल कहीं संभाल कर रख लेता है। बातें छोटी होती हैं मगर इंतजार लंबा होता चला जाता है। एक एक पल, एक एक दिन सदियों सा लगता है।

कैसे हो से शुरू हुई बातचीत कब आज मिले क्यों नहीं तक पहुंच जाती है, और इस दिल को पता ही नहीं चलता कि कब हाल पूछने से हक जताने तक का सफर तय हो गया है। उसके होने से मौसम सुहाने लगने लगते हैं, उसकी आवाज सुनकर दिन थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है, और उसकी खामोशी भी दिल के तार छेड़ देती है।

उसकी मौजूदगी ज़रूरी लगने लगती है, उसकी खुशी अपनी खुशी लगती है, उसकी उदासी दिल को छू जाती है, और उसके बिना गुजरा हुआ दिन जाने क्यों थोड़ा अधूरा सा लगता है। मोहब्बत शायद यही है। फिर एक दिन दिल पूछ बैठता है, क्या यही

आसपास की दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन आपके लिए जैसे उस पल में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, आप और वो। एक लंबी सड़क, बारिश की कुछ बूंदें और साथ वो इंसान। घड़ी की सुइयां कब आगे बढ़ गई खबर नहीं होती, बस उस एक मुस्कान में जैसे पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी दुनिया सिमट आती है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही तो है, किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने से पहले उसके साथ बिताए एक छोटे से पल को पूरी जिंदगी याद रखना।